0: चुपके चुप चुप के चोरी से चोरी चुप चुपके चुप चुप के रे।
1: ओह
2: हाँ मैं देखता हूँ, दादी माँ मेरे साथ आइए।
3: Time check for you, it's now 19 hours 54.
1: Oh, forget it.